0: 3 महिना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड
1: हामी जन्मदात्री शिकारी हुँ शिकारी
2: पूरे दैलेख मलाई चाहियो
3: बीएफएक्स सिनेमाज कुराही 10 नारायणपुर

0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाहरू अब दाङ मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक घोराईमा।
2: विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाहरू
1: वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णहरि सुवेदीद्वारा दैनिक बच्चा सम्बन्धी सम्पूर्ण चेकजाँच तथा उपचार सेवा।
2: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुपमा शर्माद्वारा दैनिक चेकजाँच तथा उपचार सेवा।
3: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट MBBS MD डाक्टर रामेश्वर देवकोटाद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा।
2: नोट, अत्याधुनिक सेवा सहित 500 MA को डिजिटल एक्सरे सेवा र औषधि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
1: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
2: सम्पर्क दाङ मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक हस्पिटल रोड खोराही दाङ।
1: सम्पर्क फोन 082-590-079, मोबाइल नम्बर 98478-10-030 र 98-29-54555।

0: आर बर्मा रेडियो मध्य पश्चिम
1: धेरै दिन पछि बिर्सिरहनु भयो त के कति कामले होला।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपल टाइम यदि तपाईं पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5884 नम्बर डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ

टिम्बा अपना उक्र जहां से सहज उठा वहां से अपना उक्र सुनकर साथ दिवीकन आशा फिगल बाटी ई कार्यक्रम में आकर अपन प्रतिभा सुनईना कार्यक्रम हो अपना उक्र अपन प्रतिभा धरा सीक्ने बाटी हमारा अपना उक्र को प्रतिभा कदर करती दानसी पुरस्कार के व्यवस्थापित कैदरखली अपना उक्र प्राप्त करने बाटी स्वर्गद्वारी वाटर सप्लायर्स के तर्फ से जहां जीवन चौधरी वहां प्रतिनिधि हुई वहां का तरफ से अपना होकर एक कार्टून पानी की व्यवस्था कई दे रख लुपये के रिचार्ज कार्ड फिर अपना होकर प्राप्त करने बाटी अपना होकर 082-568-854 डायल करती करी अपना माज में फोन के प्रतीक्षा में एक सुगर गिदर छाटो अपना होकर डायल करती करी 082-568-854।

0: मैले अर्को बिलाहुँ कुरा सुग्घर गीत धेरै कार्यक्रममा हाम्रो खेतीपाती सम्बन्धी सुग्घर सजना गीत धेरै समसामयिक सजना गीत आपको फे हमार आप खेतीपाती फे आप शुरू हुन हो स्याकलबा वकर तयारी अपना कुरा कति बिहा डरना सेकि लिएर भाँचो मर्नादेखि लिएर हरेक चिजमा हाम्रो थारू जाति कल विशेष गरिकन कृषि पेसामा निर्भर भाति परल पहिले हाम्रो पुर्खा कृषिमा आश्रित होकेन कृषि पेसा करत मार्फे अधिकांश थारू जाति हाम्रो कृषि पेसामा आबद्ध भाटी अत्र बेला के सँगै हाम्रो सम्पर्कमा आसेकलबाट उहाँलाई स्वागत गर्दारी. हेलो राम राम.
1: राम राम.
0: राम राम कहाँ से के बोल्ले? खुशीराम चौधरी सिंहौरा से. खुशीराम जी के हाल खबर का बाबर कहाँ गर्ती बचे थे? कतिको बर्खा फे आगिल
1: अपने
0: घर उहाँ बिहा ढर्ली कि नै
1: आफ्नो
0: गाउँको मनि छन् अगाडि बाटो हुन् पानी कुल्लुवा लाग्छ न ठिक बा कार्यक्रम सम्झल बाटे आज कहाँ सुन इतिहास ल सुरु
2: गरी अलिया गलिया धुरा उराला बाया गैया बिराला अलिया गलिया धुरा उराला बाया गैया बिराला ले वो गाँव की बाथिनिया रे तनी भारा पाऊरा थोड़ी देव सारा बारा राम गया पाटू वैल थोड़ी देव सारा बारा राम गया पाटू वैल अरे पूरु बात कुमाराला करिता बदरिया रे पाछी मतम कलाजी रखी पानी बरसे बारा राजा बापू अरे रखी पानी बरसे बारा राजा बापू अरे भरी गैला ताला तलैया रे में गिरे घर गला निधुकी पानी बरसी गैया.

0: अत्र हो ना सुगर सजना गादेली आफ्नो क्ला धीर सिदुर धन्यवाद बा ऐना दिन म कृष्णको समझटी करबी अब एक पास हम सुगर गीत बजिने बाटे के समझ चाहटे
1: सबसे पहले तो इन समझ चाहत रेडियो में बैठला सबको परिवार
0: छुट्टी राम राम उहाँ ल खुशी राम चौधरी झिङौरा से समझल रह आप अपने पाला 082-560-854 नंबर डायल इकाई सीखने बाटी अपन थेर लग प्रतिभा सुनाई सीखने बाटी अत्र बेला क्यू संगरिया हमार संपर्क में ऐना प्रयास ऐना तर्खर आशाकल वहां स्वागत करदारी हेलो राम राम
2: राम राम हजुर राम राम
0: राम राम कहाँ से के बोलिए
2: रतनपुर से टोपेन्द्र
0: रतनपुर से टोपेन्द्र नेपाली ना
2: हजुर का बात हो
0: हमार त सबको ठीक बा अपने सुनाई
2: ठीक बा पानी परल बा बैठल कोठा में बैठ कार्यक्रम सुन बसली
0: सबको ठीक बा ना
2: हजुर
0: कार्यक्रम सुन के बैठल बाटी
2: हजुर सकैली
0: हमारा आप एक भाषा खोई ना अपने खैली कि नहीं
2: था
0: ठीक बा कार्यक्रम में मैया करती समय समय में समझ थी फोन फेला कर दी थी और सुनाई
2: ठीक बा खेतीपाती गाँव रहा यहाँ तो बैठ कर खेना था हजुर
0: है ना पहले पहले आप खेतीपाती करी आप खेतीपाती नहीं हो
2: ना बुरा भी गईली
0: अब शहर बाजार में बैठला से उसने खेती पाती
2: ना बुराई मने बुराई में का खेती को खेती पाती तो कराई नहीं सीख भी यार वहाँ आध्या वध्या लगे कि यार बीए की डांटन कही थी वो
0: ठीक बा ल कार्यक्रम में समझल बाटी का सुने इतिहास
2: बहुत आगे एक ठो गीत रहा गाँव में साली होकर से मेला भारत जाई थी आई थी खाई थी गई थी वो गीत गई थी हजुर हाँ
0: ठीक है आपने जवानी के जो याद अखिल दिलाई सा थी ना
2: हजुर हजुर
0: शुरू करिए
2: भात खैली काटल थलमा पानी खैली बेला भात खेती काटल थलमा पानी खैला देला संगा संगा घुमबी साली रिहार की मेला संगा संगा घुमबी रिहार की मेला संगा संगा घुमबी रिहार की मेला सकिरे हो बुद्धि माघ माना आइली दुई छलकल गार सकिए हो मछली मुर आलू दिन दुई छलकल जार सकिरे हो सूर्य शिखर कई दी दुई छलकल जार रिहार से बसमा चौर घर मझरी रिहार से बसमा चौर रिहार मझरी होटल में बैसका ठुनर बात कैदी होटल में बैसका ठुनर बात कैदी सची हो रे बुद्धी माग मना आईली दिल्ली छलक जार सकी रे हो माग मना आईली बुद्धी दिल्ली छलक जार हजूर
0: अत्र हो ना
2: हजूर
0: सुगर गीत सुना रेली अपना को जमानत पाला में गीत गिल गीत
2: पहले तो संग निंगना घूमना है ना माग मनना गिदै मान नस्ना पहिले त बाप सञ्जलस त रुन सोखा हजु र
0: काशा थारु बस्तीमा उसा रहका हो ना
2: आ मै त जंगल के ओ ठाउँ हो ओ पहाडी से थारु बस्ती से मार बड़ी सल्ला अनि त चौधरी बगाल से सल्ला मिलका
0: ए पहिले घर कहाँ कली
2: ओ तुलसीपुर चौत भसुर
0: ए तुलसीपुर हो ना
2: हजुर भसुर जी स्कूल दान के दक्षिण राज्य एक छोत्र गाँव मेरा छोटी से बचपन से खेलना खेना गईना एकता करना घूमी जितना मूस कोरना कहा घाम ताक में चिड़िया मरना दुगरना खेना लगे वो मच्छी मरना जिंदगी हाँ पहले तो बहुत ही मजा रहेगा बस ये मैं श्री सा रख लो मैं खबर नहीं ले लगेगा अब मुआब गए थे अब हमारा का सल्लाह नै मिले हावा नैलन नाग हिलान नै देहल आप फिर भेट रही था कहाँ से अल बहुत दिन के अल अभी बुरा गिल झन थुनिया एक पत्र लिखा उनकी
0: आपने की पहिला के जमाना के याद फिर दिले र यी आफ्नो जुन गिटगिजीले ऊ आफ्नो पहिलो सङ्गरेनसम्म फेरि पुगोस् हामीलाई यो शुभकामना फेरि दिए साथी ल कार्यक्रम सम्झले धेर खुसी लागल गीत फेरि सुनादेले ऐना दिनमा फेरि तङ्क सम्झ टिकर्पी के सम्झ साथी अब एकैछिन पछि हाम्रो
2: सुकर फुल त म हर बिहार लगाएको पाले पाइ छुने पाइ छुने कबु लाइन जा रहे थे लगे ना तब लगे छु म इसे रंगीलो नहीं थी नहीं नाच गान मा ले अब कार्यक्रम सबसे पहले तो आप हम समझे थे वहां से कार्यक्रम का साथी और मही तो तीन कई चिनल नहीं चिनल मने सबको समझे थी विदा हुई थी राम राम
0: राम राम उहाँ रहल टोपेन्द्र नेपाली रतनपुर से सम्झल रहल सुगर गीत सुनाएको बेला आप अपने पाला सुने भया 85-60-854 नम्बर डायल के गाई सक्ने बाटे अत्र बेला मेरो प्राविधिक रूपमा शान्त कुमार बुढा मगर माइनस सात देतीबाट हाम्रो खेसी भाषा सुगर गीत सुनिने बाटे अत्र बेला गीत सँगै आमा सम्पर्क महाशकलबाट राम राम हेलो राम राम
3: राम राम काबार खबर
0: सब ठीक बा कहाँ से के बोल लिए
3: ओ पुरानो संग्रह त पढला है
0: पुरानो संग्रह त पुरानो संग्रह कलि डान्से आफ्नो एक
3: नाम डान्से ठक आज झन्की जेतना भने
0: कृष्ण चौधरी ना
3: हजुर हजुर
0: न
3: आज त पहिला रङमा त बिना कहि काम आज त झन्की चाउ जेतना
0: पहिला रङमा छैन के न त्यो चर्चित हुलिया एन्टी देशमा कहि केन मनी कहि केन सिनेकला बाटी
3: हजुर
0: हजुर झिम्टी परिवार के व्यस्त
3: परिवार बिहान के व्यस्त सन्ध्य अजकल अलिक पानी आइतिर अलिक बिहान त नै पाइलौँ है कबु पानी नै पर्ने बेला व्यस्त
0: अजकल कै रुपियाँ किलो होला
3: ओ 200 रुपियाँ किलो
0: ठिक भयो आफ्नो व्यापार मजा आओस्
3: आउँदै त अब के के अब 240 व्यस्त के 230 व्यस्त मैले 200 किलो व्यस्त
0: ए उसो भए अपने क्लास सम्पर्क गर परल मजा र ताजा अनि सस्तोमा पाइपल है
3: हजुर हजुर
0: ल ठिक भयो कार्यक्रम सम्झलमा इतिहास कहाँ सुने इतिहास
3: डायरी हो कि कहाँ जाट हो ऊ सुनाइक लगभग न
0: ल सुरु गरे
3: फुल्टी र लक फुला ह काकर टुर खोस्त सानो फुल्टी र लक फुला ह काकर टुर खोस्त सानो छुटी मसे माया प्रेम लगेलक काकर अखिन आकाश छोर थोक सानो छुटी मसे लगेलक माया प्रेम अखि आकर काकर छोर थो सानो फुल्टी लग फुला हाँ काकर टुर छो सानो फुल्टी लग फुला हाँ काकर टुर खोस्त सानो छुटी मसे माया प्रेम लगेलक काकर अखि आकर छोर थोक सानो
0: लगलग महिना छोरा खोज्न
3: है
0: स्वास्थ्य छ नि त
3: हजुर हजुर
0: औजन देखेको बनिलिएको छ भाइ
3: हजुर पहिलो त छुटगिला दोस्रो नि छुटल भएको पर्ला
0: है ल सुगर भावना सुनाले आफ्नो धन्यवाद के सम्झ छ अटे
3: बुढी सम्झ अन्तिममा म एकठो कान्छी सालीबाटी मुहिन सम्झ विदा हुन्छ
0: राम राम उहाँहरूलाई कृष्ण चौधरी आप अत्र बेला हाम्रो एकठो सुगर गीत सुनाइजेटीबाट गीत पास आफ्नो पाँच उपस्थित स्वीकारे

0: हाले लिस अत्र कति
1: अत्र न
0: विदा हेतु सकृहि नाग पासैना दादु भयन बहिनेन अपने उग्रेन सकु स्टाफ मुग्रेन समझति मैं विदा हेतु ले जरा वर्षा लागल वहां से वर्षा में काम कर भी स्वास्थ्य को विचार कई थे वो करती मैं विदा लेतु ना
1: ल राम राम वहां ल छित्रु चौधरी सुगर गीत गाके गेल अपन जीवन में घटल घटना के बारे में सुगर गीत सुना के गेल हमारा पुछार पुछार हो के आप आशय कलबाटी पक्को फिर अपने आवाज कुछ मनोरंजन करने हो कि अपन दुख सुख दुख पोखना एक माध्यम फिर बनल बा हुईठा अत्रा बेलासम अपना कार्यक्रम सुनकर साथ दिल सबको जान लग धीरे धन्यवाद बा आज हमारा एक दिन विजेता बनाई पर्ना हुईठा आज खुशीराम चौधरी झिंगौरा के संग हमारा विजेता बनाई थे अपना कला धीरे धीरे बधाई बा अपना एक हफ्ता पितर रेडियो मध्य पश्चिम कार्यालय में संपर्क करी अपना प्राप्त करकली 100 रुपये रिचार्ज कर उसका जीवन चौधरी के तरफ से एक कार्टून पानी प्राप्त करकली धीरे धीरे बधाई बा वो अत्रा बेलासम सबकोजान सुनकर साथ दिली फोन लगाइना प्रयास करली सबको मैगर कपिल हमला धन्यवाद उसका प्राविधिक रूप में साथ दिला आज शांत कुमार बुढ़ा मगर अपने कला धन्यवाद देती मैं शालिक राम चौधरी विदाई टू रिजी मध्य पश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

राम राम सन्जे 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर मसारिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। दाङमा राप्ती लद्देमसे एकजनाको उद्धार कगिल बा। राप्ती गाउँपालिका 4 मौरी घाट निवासी 30 वर्षीय हेमन्त गिरी भालबाङ स्थित राप्ती लद्देमा ट्र्याक सुटको पासु लगाकन आत्महत्या गर खुवा जबेर पासो फुसुक्कन पुलमसे लद्देमा खसलक इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङको कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गोपाल न्युपानेसे जानकारी दिइराख्ल। लद्देमा खसलक गिरिहन सामान्य चोट लागल बाटिन। आज लद्देमा खसलक जानकारी पैटिकी इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङ ओ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 2 नम्बर हेडक्वार्टर ज्वालामाई गढ्से खर्गिलक प्रहरी टोलीले तत्काल सकुशल उद्धार गरिकन भालुबाङ अस्पताल पुगागेल रह। सरकारले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धकमा कैलालीक हिकमत बहादुर रावल हन नियुक्त गरिराखल। आज बेसलक मन्त्री परिषदको बैठकसे रावल हन नियुक्त गर्लक सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसे जानकारी दिइराखल। पासक समय बीबीसी नेपालीमा आबद्ध रावलसे यसै अगाडि ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा फेक काम गरल रह। उस्तक सरकारसे सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुङ्गार नियुक्त गरिराखल। उस्तक विशिष्ट संरचना संचालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिका रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कान नियुक्त गर्न निर्णय गरिराखल। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्री परिषद बैठकसे नेपाल प्रहरीका 8 जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी हन सरुवा गरिराखल। बैठकसे कमैया श्रम निश्चित गर्न सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली 2083 ओ शिक्षा 10 संशोधन नियमावली 2083 स्वीकृत गर्न निर्णय गरिराखल। दैलेखमा कर्णाली लद्देमा यात्रुवाहक मिनी बस खसलबा। सुर्खेटसे कालीकोट जैतिकर्लक क प्र 02001 ख 1055 नम्बरको मिनी बस बिहान 11:30 बजे हो चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका साथ कर्णाली राजमार्गको सांकेतारमा रलक कर्णाली लद्देमा खसलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख श्रवण कुमार विकसे जानकारी दिइराख्ल। उहाँका अनुसार बसमा कठ्याक यात्रु रलहकना खुलल्ने हो। सुर्खेत बस पार्क छुटबेर 6 जना यात्रु रलकमा डगरीमन थप यात्रु चौहर्लक न्यू चौहर्लक कना एकिङ न्यूलक प्रहरीको काही बाटिन। प्रहरीको अनुसार भीरमस्य अड्कलक एक ठो सपनी कार्गिल बा। बस सड़क से 600 मीटर तर कर्णाली लद्देमा खसलक हो। दुर्घटना पासा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म दैलेख माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सुरक्षा बेस ओ प्रहरी चौकी पाल्टडाडसे उद्धार टोली खड्गिल बा। सन् 2026 जून महिनामा 91,363 विदेशी पर्यटक फितरलबाट नेपाल पर्यटक बोर्डसे सार्वजनिक करलक अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार जूनमा हवाई मार्गसे ऐना पर्यटक गत वर्षको तुलनामा 19.5% वृद्धि देखिलक हो। गत वर्षको यही महिनामा 76,425 जनासे नेपाल भ्रमण गरल रह। उस्तक कोविड 19 महामारीसे अगाडि सर्वाधिक पर्यटन गतिविधि रलक वर्ष सन् 2019 जून महिनामा 74,883 आगमन हुइल रह। यीका आधारमा फे यी वर्षको जून महिनामा 22.01% पर्यटक संख्या वृद्धि हुइलक हो। जून महिनामा नेपाल ऐना पर्यटक मध्ये सक्रियसे धुर दक्षिण एसियाली मुलुकसे 48,254 जना आरल। जुल कुल आगमनको 52.8% हिस्सा हो। मुख्य स्रोत बजार मध्ये भारत से केल 41,809 जना पर्यटक आर्खल और एसियाली मुलुक से 16,152 पर्यटक नेपाल आरल। जाकर्म चीन से 9,995 पर्यटक आगमन हुईलबाकल से जापान से 925 दक्षिण कोरिया से 914 ओ थाईलैंड से 1,514 पर्यटक नेपाल आरल। सड़क विभाग से मनसूनको समयमा हुइसक्ने सम्भावित सड़क अवरोध ओ प्राकृतिक विपत्तिहरू मध्यनजर गर्दै देशभर उच्च सतर्कता साथ पूर्व तयारी पूरा हुलक जना राखल। विभागले यी वर्ष फे आफ्न स्थापित कार्यविधि अनुसार राजमार्गमा हुने अवरोध तत्काल हटाइला यातायात व्यवस्था सुचारू गर विशेष योजना अगाडि सरलक हो। सड़क विभागका महानिर्देशक डाक्टर विजय जैसिक अनुसार विभागले हेर्ना कुल 15,000 किलोमिटर सड़क सञ्जाल मध्ये करिब 10,000 किलोमिटर सक्कु मौसम चल सड़कमा विशेष प्राथमिकताका साथ जनशक्ति हो उपक्रम परिचालन गरिगिल्बा। विभागसे तय करलक नीति अनुसार मुख्य राजमार्गमा पहिरोको कारण सड़क अवरूद्ध हुइलक दिनकुनको समयमा आधा घण्टा भित्र प्राविधिक टोली पुग्ना ओ सामान्य अवस्थामा 2 घण्टा भित्र डगर खुलिना लक्ष्य धेराखल।
वो जटिल प्रकार का दीर्घ रोगी कैंसर मृगुला प्रत्यारोपण मोटु का भल फेरना बेरमे आना लुम्बिनी प्रदेश सरकार से उपलब्ध करीना 2,00,000 रूपये आर्थिक सहयोग से बेरमे को नक्शे राहत महसूस करल बाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार से प्रदान करते लग जटिल प्रकार का दीर्घ रोगी कनक उपचार सहयोग कार्यक्रम से प्यूठान का बेरमे कनक का उपचार में राहत पुग्लक हो। एरावती गांवपालिका 3 थार दमार प्यूठान का रक्त कैंसर पीड़ित 13 वर्षीय सुस्मिता थापा को उपचार कला प्रदेश सरकार से 2,00,000 रूपया उपचार खर्च सहयोग प्राप्त हुईलक पेरोमैक का बाबा लोक बहादुर थापा से बटुआ रखल प्रदेश सरकार के उपचार सहयोग से छाई के उपचार में थप राहत मिललक वहां बटुआ रखल। स्वास्थ्य कार्यालय प्युठान का तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 में 40 जना 2080-81 में 74 जना ओ 81-82 में 58 जना पेरोमैक के उपचार खर्च लाग सिफारिश हो रहा। चालू आर्थिक वर्ष में हालसम 37 जना से सिफारिश लेलक स्वास्थ्य कार्यालय प्युठान का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत पुष्कल प्रसाद श्रेष्ठ से जानकारी दी रखल। लुम्बिनी प्रदेश सरकार से कैंसर का बिरमिया को नकला अस्पताल में से जो खर्च लग्ना खर्च अस्पताल हन भुगतानी करने व्यवस्था कई राखल कला से मोटु का भल फेरना वो मृगुला प्रत्यारोपण करना बिरमिया से काम संपन्न हुई पाच भुगतानी कला का दावी पेश कर सेक्ट उसको प्रक्रिया पूरा हुई पाच रकम बिरमिया का खाता में जो जैना व्यवस्था कई राखल। हुईठा त आखिर रेडियो मध्यमस्तिक थारूभाषक समाचार अत्रह काल संजय फे थारूभाषक मध्य पश्चिम खबर सुन सकने बाटे अखसा खबर मैसे समाचार कक्ष कसक को संग्रहण संग मैसारिक राम चौधरी विदाई टू रेडियो मध्य पश्चिम उन्नीटी रवि राम राम।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: स्वर्गद्वारी चलचित्र मंदिर घोराईदांग में भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ हिंदी कथानक चलचित्र वेलकम टू द जंगल।
3: हमें जाने दो मालिक, हम सब भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं।
4: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
5: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?